अजुनी सह पंग गुर प्रसाद जाप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो गई जे सोची लख वार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सचियारा होई है कब कूड़े तुटै पाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निसान गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट हुक्मी हुक्म चलाए रा

0: निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है,
1: नाद जी है, जाद है,
0: अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है,
1: भंज चूज चंज,
0: अमीक है, रफीक है, अदंत है, अबंध है,
1: भूज सूज काल जाल है,
0: अला है, अजा है, अनंत है, महंत है,
1: अली कनर श्री कनर लाम सब है,
0: अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है,
1: शोक है, शोक है, कर्म परम है,
0: अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है,
1: निदान नीक फ्रीक है,
0: चंग प्रयात शंद,
1: नौ सर्वमान्य समास्ति निदान, नौ देव देवे पेकी पेवे,
0: नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व संगी
1: अनाथिन संगी प्रमाथिन, नमो पान पाने, नमो मन माने,
0: नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने,
1: नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे,
0: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाथे समस्ति
1: कलांकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरम परम रूपे,
0: नमो जोग जगेश्वरम परम सिद्धे, नमो राजेश्वरम परम विद्धे,
1: नमो शास्त्र पाणि, नमो वस्त्र मणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता,
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते, नमो जोग जगेश्वरम परम जुक्ते,
1: नारायण गुरु कर्मे, नमो प्रेता प्रेत देव सुतर्मे,
0: नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाह, नमो पू
1: दान, नमो मान मणि, नमो रोग रोगिन मस्त, नमो
0: मंत्र मंत्र, नमो चंत्र चंत्र, नमो इष्टे नमो तंत्र,
1: सदा सदा नाम सर्व परनाशी नूपी रूपे समस्तल निवासी,
0: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद कर्ता, अदो उर्धर धंग अगंग उंग हर्ता,
1: परम परमेश्वर पुरुष पालंग, सदा सर्वदा सदाता दयालंग,
0: अशेति अपेति अनामंग कामंग, समस्तो पराजी समस्त स्तामंग, तेरा जोर चाचरी शंद,
1: जले थले पीत पे है,
0: प्रभु है, अजू है, अदेश है, अपेश है, पुचंग पर्याय
1: नंदी स्वरूपे, नौ सर्वमान्य समस्त निदाने,
0: नमस्तंग निर्थापे, नमस्तंग परमाथे, नमस्तंग गंजे, नमस्तंग पंजे,
1: नमस्तंग पाल, नौ सर्वदेशे, नौ सर्वपेशे,
0: नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो महामहे,
1: नमो गीते, नमो प्रीति प्रीते, नमो रोग रोके, नमो सुख सुखे,
0: नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग,
1: नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तारंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग,
0: नमो सर्वदृशं।

0: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद त्रिप्रसाद सवैये पाश दिसमे श्राव सो समूह सुधान के देख प्रयो कर जो जति के
1: सूर सराधन सुद सदाहिक संत समूह अनेक मति के
0: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के
1: श्री भगवान की माहिर बाहू ते एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जरे जर सांगा नूप तंग सुरंग सुवारे
1: कोट रंग करंग से कूदत पौन के गौण को
0: भारी भजान के फूल पली बितनियाल से सुजात बिचारे
1: इते पैतू कहां पे पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे
0: जीत फिर अस्व दे दिशान को बात टोक मृदंग नंगारे
1: कुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे
0: भूत भविख भगवान के पूपत गौन गानी जात बिचारे
1: श्रीपति श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सदारे
0: तीर्थ नाम दया दम दान सुसंजम अनेक अनेक बिसिख है
1: वेद प्राणक देव करान जमीन जवान सवान के पेख
0: कौन आहा जते जत सब विचार हजार

0: परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे।
1: सुर अरीर मरूम वासन मातम तंगन मान मलेंगे।
0: श्रीपति श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहाँ निदान चलेंगे।
1: बीरा पार बड़े बड़े आस उतार चात सार पिशैया।
0: तोरत देश मलिंदम वासन माते जान के मान मलैया।
1: गाड़ गडान तोड़ न हास बतन हे चक चार लवैया।
0: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक सो एक दवैया।
1: दानव फे देव निंदन साचर भूत भविख।

0: ऊपर सान्य फिरे जग सतर सब अवलोक छपेंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र नरात जोन त्रिलोक को राज करेंगे।
0: कोटि शनानिक जातक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे।
1: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम

0: जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तो जो करियो रक्षा
1: राख लियो मैं रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे
0: दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता
1: काल पाए ब्रह्मा बपतराओ काल पाए शिवडू अवतराओ
0: काल पाए कर विषन प्रकाश सकल काल का

0: काम मूले न कीचै जित अंत पछोताई
1: है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
0: कह नानक मन प्यारे तू सदा सा संभाले।
1: अगम गोचरा तेरा।

0: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी
1: कूड़ किसो पंचे नाई मनसा सा समाणी
0: जन्म रतन जिनी खटिया पले से बन जारे
1: कह नानक जन्म निर्मल सुधार गुरु नाले
0: जी को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख से कोई जियो रहे गुरु नाले
1: गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मा समाले
0: आप छड सदा परने गुर बिन अवर न जाने कोई
1: कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए
0: जेको गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे
1: पावे मुक्त न होत कोई पुछो विवेकियां जाए
0: अनेक जुनी परमावे बिन सतगुर मुक्त न पाए
1: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए
0: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए
1: आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी
0: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी
1: जिनको नजर कर्म होवे हृदय तना समाणी
0: पीवो अमृत सदा रो हर रंग जपियो सारंग बाणी
1: कह नाम खुदा गावो ए सच्ची बाणी
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी
0: हर हर नित करे रसना कहा कछु ना जानी
1: चित जनका हिरल्या माया बोलन भैर वाणी
0: कहे नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ा।

0: तो दसरी राजा तू जग में आया।
1: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन वसाया,
0: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया।
1: कह नानक यो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर सुन चलाया।
0: ए नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर न

0: कहे नानक ए निंतरंज से सतगुर मिलिए देव दृष्ट होई।
1: हे सर्वनो मेरे ओ साचा सुनना नो पठाए,
0: साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी।
1: जे तो सुनी मंतन हरिया हुआ सुनारा सुमानी,
0: सच अलख वडाणी ताकि गत कही ना जाए।
1: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचा सुनना नो पठाए।
0: हरियो गुफान दर वाजा पवन
1: बजाया, बजाया पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया।
0: गुरुद्वारे लाए पावनी कना दसवां द्वार दिखाया।
1: तै अनेक रूप नाव नव निद तुसदा अंत न जाय पाया।
0: कहे नानक हर प्यारे जियो गुफान रखे वाजा पवन बजाया।
1: एहो साचा सोहिला साचा कर काबो,
0: काबो ता सोहिला कर साचे जिथे सदा

कुमार जब उसका वर्ण चिन्ह न जावते तब हर सो को से व्याप जब अपना पापार्पण तम वो कांक सोत परम आपन के लिए आवर्ती जा नाने करने हरण दूजा जावत प्रभु केवल तनी तब बंद मुद को किसको गणे जावे कर कम पार तब नर सुर को कोण उतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाय तब शिव सो को जा जब आप अपनी जोता रे तब कौन निर्गुण कत डरे आपन चलत आप करण हार नान ठाकुर गम पार बना शिशु को अपने आसनता जन मरण को आविशांत बना संजा पूर्ण करता प्रास होय तब जम की त्रास को कुछ होय जब अवगत गोचर प्राविका तब चित्र कुपत किस पुछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन छठे कुण बंधन मान दे अपने आप भी चर जा नान के अपन रूप आप ही फिर जा जय निर्मल पुरुख पुरुखवत होता तय मैल कहो कह तोता जय निरंजन कार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अपमान जय स्वरूप केल जगदीश तय छल सुलगत को किस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूकम त्रुदाव कर्ण करावण करण हार नानी करते कर समार अपनी शोभा अपन संग बनाए तव कौन माय बाप सुत मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे प्रवीणता वेद देव का को चीन जब अपने आप आप उतारे तो सगन अब सगन का विचारे जा अपन ऊजे अपने अब नीरा तय कौन ठाकुर कौन कही चेरा बिस्मन बिस्म रह समाद नानी का पुनी जानो अपनी कर जानो आप जय चल अच्छे भेषमाव किसे व्याप्त माए आपस को आप देश तय कौन का नहीं प्रवे जाय कह के भगवंता तय कौन चिंतता के चिंता ते अपने आप आप दया तय कौन कथे कौन सुनने हारा बोवें तू ते ऊंचा नानक आपस को आपे बहुचा जय आप रचो परपंच कर तय कौन मैं किन्नो विस्तार पाप उनता भई का को नर को सुर मुचाओ ते आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान पमान प्रकार के ओखिया ने अपन के लिया कर देख खेल संकोच है तो नानक एक है जैव गत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप दो उपा कह तापे धनी उनकी शोभा नु बनी आपे को ते करें चो जा फिर रस भुगन जाग जिस भाव तुझे अपना लावे जिस भाव तुझे खेल खिलावे बेशुमार थागन ते तो ले जो बुलाव त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनार नानके को बसरिया दूजा कै दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुने हार आपे का विस्तार जाति भवत श्रेष्ठ उपाय पाने लय समाय तुम ते भिन्ने किछो आपन सु सब जगत परोय जाकुब राव जी आप जाए सतनाम सोजिन पाए सो सुंदर सी तत्का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी अंतर सबदा के आदीन दयाल नाथ को ना जिस राके कोय न मारे सो मुह असमन विसारे तिस तय और कहां को जाए सब श्री निरंजन राय जी के जुग जाके सब हाथ अंतर बार जानो साध गुण धन बेंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर है दया सब उपर ओत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रह व्याप परत वाले जीन वो पात जो जो रच सतिस तिहात जिस भाव ति ले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हर नानक जाने जन लग रहे कि ना तिसकी आस न बिरती जाए सेवा को सेवा बने आई हुकम बूझ परम बुधवाए इस ते प्रणय विचार जाके मन वसरकार बंधन तोड़ भय निर्वाय रंधन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले सांसंग मिल कर आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत्को विचार दृढ़ देखा करो उधार अमृत बचन के गुण गाओ प्राण तरण का स्वभाव आठ पैर पर प्रापे खू नीरा मिटे ज्ञान विसंदेर सुन बदेशिर देव साव मन चे नान कुल पाव हल पल दल स्वा राम नाम त्रोड़ तार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन सहित साज प्रखिया मंदा नाम जो पोले लाए दुख दर्द मंदे बोझाए सच पर करो पार इधर कहने फे खेव तुम्हारे एक टेक रखमण माए नानक बहुण आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए राखण हारते निरपो जपे सगल भो मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभु राखे तिस नाई दुख नाम जुत मन हो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार ते जन को कोई न पहुंच हार श्री रूप ठाडा गुरु सूरा नानक ता के कारज पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख दुर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हारू धन सेवा सेव पुराण त्रजामी प्रखुरदान जिस मन उससे सोत निहाल ताके निघ्न आवत काल।

राष्ट्रपति संत संगंत प्रभिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्री एक कसकटमायण ग्रंग नानंद स्थाय नौन दमल प्रभु का नाम दे मैं इसका विश्राम सुन समाध न तैनात कह न जय चरज समाध तिन देखे श्याम दिखाए नानक तीजन सो जी पाए सो अंतर सो बार आनंद कट कर ब्या प्रभ भगवंत अरुण मैं आकाश प्या सब लोक पूर्ण प्रतवाल बाण तिन पर्वत है पर जैसिया कह तैसा करम पौन पानी बैसन तरमाए चार कुण दै समाए तिस्ते पन्ने कोठा गुर प्रसाद नानक सुखभाव वेद प्राण समर्थ में देख सिर सुन कतर मैं एक बाणी प्रभु की सब कोई बोले आप ढोल न कहूं डोले सर्व कला करके ले खेल मोल न पाई गुणे मोल सर्व ज्योत में जा की जो तारे स्वामी उत्पोत गुरु प्रसाद प्रभु का नाज नानक तिन में विश्वास संजना का पेखण सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो वचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस की रहते सत भजन साधु सब कहते जो जो हो सो इस कुमाने करण करावन हार पव जाने अंतर बसे बार भी हो नानक दर्शन दे सम हो आप सत किया सब सत तिस प्रवते सुगलित पाते तिस भवता कर विसार तिस भवता एक अहंकार अनकला लखन जाए जिस भाव जी ले मिलाए कम न प्रकों कहिए दूर या पे आप भरपूर अंतर का जिसे आप जनाए नानक तिजने आप हो जाए सर्वभूत आवरतारा सर्वनारायण पेखनहारा सर्व समग्री जा का तनाया पुंज से आप सुनाओ जाने खेल बना के आकारी की निभाए सबके मत अलिप तो रहे जो कुछ कहने सुहा पे गए आगे आवे आगे जाए नानक जा भाव तले समाए तुम ते इस तुहे सुना ही बुरा और एक कहो कि कुछ करा भला कर तुदा नहीं किया पे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत अपन संग्राज ताकि गद में कहीं न जाए दूसर हो तो सोची पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक के जान जो जाने तिसरा सुख होया मिलाए ले प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त श्री दे भगवंत धन धन धन जने आया जिस प्रसाद सब जगत राय जन आवन कहे सुभाव जन के संचित आवे नाव आव मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार सलोक है।

तेरा मर्तबा रंग बिरंगा ने कना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब किछ तेरे वस तेरा कर भला तेरे

मोह चुकाया। पेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंधिन भगत करे दिन राती हौ मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार। सतगुर सेवे सहज उपजै हौ मैं तृष्णा मार। हर गुणदाता संत सद मन वसे सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, मन नाम निदान हर मन वसे हौ मैं दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया हौ सद बलिहारे जाओ, अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई। हर जियो पवित वचल सुखदाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। सिर राग महला तीजा हो मैं कर्म कमाव दे जम डंड लगे तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए। तुर पुरब करते लिखिया तिना गुरमत नाम समाए। रहाओ बिन सतगुर प्रतीत न आवई नाम न लगो पाओ। सुपने सुख न पाइये दुख मह सवे समाए। जे हर कीचे बहुत लोचिए कीर्तन मेटिया जाए। हर का पाणा भगती मनिया से भगत पए दर थाई। गुर शब्द दड़ा वे रंग स्यो बिन कृपा लिया न जाए। जे स्यो अमृत नीरी है पी बिख फल लागे ताए। से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमाव दे बिख हौ मैं तज विकार। मन हड़ किते न पाए ना छूटे सिमरत सास्तत सो दो जाए। जे मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए। हर का नाम निदान है जिस अंत न पारा वार। गुरमुख से ही सोह दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और न कोई। गुर प्रसादी पाईए करम प्राप्त होए। सिर राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै। गुर पाए हर रस पीवे सहज रहे उड़े न आवे जाए। निज कर वासा पाईए हर हर नाम समाए। मन रे गुर की कार कमाए गुर के पाणे। जे चले ता अंदिन राचे हर नाए। रहाओ पंखी बिरख सुहावड़े उड़े चो दिस जाए। जेता उड़े दुख कणे नित दाजे तै बिल लाए। बिन गुर मैल न जापई ना अमृत फल पाए। गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुबाए। साखा तीन निवारिया एक शब्द लिव लाए। अमृत फल हर एक है आपे दे खाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिना छाओ। तिना पास ना बैसिए ओना कर ना गिराओ। काकटी है तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ। हम हुक्मे कर्म कमावणे पे कीर्त फिराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह पे जह तै जाओ। हुक्मे हर हर मन वसे हुक्मे सच समाओ। हुक्म न जाने बपड़े पूले फिरे गवार। मन हट कर्म कमाव दे नित नित होहे खुआर। अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार। गुरमुखिया मोह सोहने गुर कै हित प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार। आए ते परवान है सब कुल का करे उदार। सब नदरी कर्म कमाव दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर करे देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडियाईया करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आईए मनमुख बूझ न पाए। गुरमुख सदा मुख उजले हर वसिया मन आए। सहजे ही सुख पाइए सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए गुर की सेवा। गुर भगत है बिरला पाए कोई। रहाओ सदा सुहाग सुहागणी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर निहचल पाइए ना ओहो।

ना विछड़े पिरके अंक समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चुकाया गुरमति सहज सुभाए, बिन शब्दे जग दुखिया फिरे मन मुखा नु गई खाए, शब्दे नाम ते आइए सच्चे सच समाए, माया पूले सिद्ध फिरे समाधना समाधना लगे सुपाए, तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए, बिन गुर मुक्त न पाइए ना दुविधा माया जाए, माया किसनु आखिए क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है हो मैं कर्म कमाए, बिन शब्दे परम न चूकई ना विचो हो मैं जाए, बिन प्रीति भगत न हो वई बिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हो मैं मारिए माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाइए गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत न होए, भगत वछल हर मन वसया सहज मिलया प्रभ सोए, नानक शब्दे हर सा लाहिए करम प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभ की ना आपे परम पुलाए, मन मुख कर्म करे नहीं बूझे व्यर्था जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग में चानन करम वसे मन आए, मन रे नाम जपो सुख होए, गुर पूरा सा लाहिए सहज मिले प्रभ सोए रहाओ, सहज मिले प्रभ सोए रहाओ, परम गया पौ पा गया हर चरणी चित लाए, शब्द गुरमुख शब्द कमाइए हर वसे मन आए, महल कर महल सच समाइए जम काल न सके खाए, नामा छीबा कबीर जुलाहा पूरे गुरते गत पाई, ब्रह्म के बेते शब्द पछाणे हमे जात गवाई, सुर नर तिन की बाणी गावे कोय ना मिटे पाई, दैत पूत कर्म तरम किछ संजम ना पड़े दूजे पाव न जाए, जाने सतगुर पेट

सदा सच संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिथा, शब्दे पव जल तरना, लख चौरासी फिर दे रहे, बिन सतगुर मुक्त न होई। पढ़ पढ़ पंडित मोनी था के, दूजे पाए पत खोई। सतगुर शब्द सुनाया, बिन सच्चे अवर न कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे, नित सच्ची कार करन। तिना निज कर वासा पाया, सच्चे मैल रहन। नानक भगत सुखिए सदा, सच्चे नाम रचन। श्री राग महला।

साक पि पज खले सबो पजै आसरा चूके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती बाओ साहिब नितान आका तान आए न जाई थिर सदा।

चित अवै उस पार ब्रह्म तान है चल हो वै राज। जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रस्त कुटुंब।

क्रोध मोह वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संगार। पोथी गीत कवित किछ कदे न करन तरिया, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया। सास्तत सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया, तीरथ गवन करे। खट कर माते दुगणे, पूजा करत करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नर के जाए। राज मिलख सिकदारियां,

लग रहया चित न आयो पार ब्रह्मता सर्प की जोन पिया बहुत तनाड अचारवंत सोबा निर्मल रीत मात पिता सुत पाया साजन संग परीत।

ही रहत जुगता, जोगी कहत मुक्ता, तपसी तपहराता, मोनी मोन तारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, पगत नवे परकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त तर तरमाता, एक शब्दी बहु रूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लोक न देवी दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, कट ही किन्हें कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपावा, त्यागी सगल

करके आपनी आपे लय मिलाए जियो। हुक्म जिना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया, सहिया सो सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो। जिना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अह करण चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया पाग बैठा मस्तक आए जियो। अमृत तेरी बाणिया तेरे भगता हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखिए अपनी नदर करे निस्तार जियो। सतगुर मिलया जानिए जित मिले नाम बखाणिए, सतगुर बाज न पायो सब थकी कर्म कमाए जियो।

इन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट हुआ जाको जोत तरी कर तार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक तार जियो सब संजम रहे स्याण पा मेरा प्रभ सब किछ जानता प्रगट प्रताप।